0: एक शुभ कामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मिनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।

रोहित बुढाथोकी ओडा अध्यक्ष, बुद्धिमान तामाङ सचिव एवं गौरीशंकर गाउँपालिका ओडा नम्बर 2 परिवार जुगु दोलखा।

0: 好大个物业把你拿去给俺好哥，我站苗路，我站路苗路，没完再来一我我站着等着过谁完了过来牛牛了俺看，俺我先管你好，我那啥我老都俺我再见牛牛了，再问题呢？
1: 耶，他为了给基本的台钱的可干净，他为了把那个上铺的下面的背地是 rental and catering service 这个什么白眼人钱？
0: 哎，我抓一个我一好，我喜欢好你那好大。
2: हजुर हरकी सेवामा सम्पूर्ण नयाँ सामानको साथमा सदरमुकाम चरीकोटमा विवाह व्रत बन्ध सेमिनार सभा सम्मेलन उत्सव पिकनिक जस्ता विभिन्न कार्यक्रमका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी आवश्यक परे भोजपति तथा शुभ कार्यका लागि अनुभवी तथा दक्ष कुक वेटर मसालजी उपलब्ध गराउँदछौ। यहाँ आवश्यक चाइनिज टेन्ट चायर कुर्सी भाँडाकुँडा कार्पेट म्युजिक सिस्टम बत्ती लगायतका सामानहरू भाडामा पाइनुका साथै हाफ तथा फुल क्याटरिङ पनि गरिन्छ।
3: ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता। सम्पर्कको लागि कुमार श्रेष्ठ 9852428883 9842228883 र कृष्ण श्रेष्ठ 9864002041।
4: वैतेश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरीकोट दोलखा।
5: यो दशैंको शुभ कामना।
6: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
7: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलख।

0: 是不干嘛呢？
1: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेन्कुवर शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नम्बर 7 परिवार दोलखा

सुबह कहाँ मना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस जिरी नगरपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू समस्त जिरी नगरवासी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। मित्र बहादुर जिरेल नगर प्रमुख कृष्णमाया खड्का बुढाथोकी उप प्रमुख एवं राजकुमारी खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिरी नगरपालिका परिवार दोलाखा

हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचोक गांवपालिका निवासी बुबामा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त तुलोखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुलबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचो गांव पालिका परिवार दोलाखा।

0: पालिका बासी दोलखा जिल्ला बासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष, तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरशंकर गांवपालिका वडा नंबर 1 परिवार जुगु दोला।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोलोखारो रामेछाप जिलावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। खिम्पी जलविद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गांवपालिका

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतेश्वर गांवपालिका र दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: राजकुमार श्रेष्ठ, बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8, सिपी गाउँ, दोलखा।

0: शुभ कामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस जिरी नगरपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरु समस्त जिरी नगरवासी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। मित्र बहादुर जिरेल नगर प्रमुख कृष्णमाया खड्का बुढाथोकी उप प्रमुख एवं राजकुमारी खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिरी नगरपालिका परिवार दोलाखा।
1: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.3।

हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचोक गांवपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, फूलबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचो गांव पालिका परिवार दोलाखा।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा रे

0: हार्दिक शुभ कामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांवपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू राजनीति कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त तुलोखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुलबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचोक गाउँपालिका परिवार दोलाखा।
1: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षित बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिंचो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा रे

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुवर शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारभू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: सोनाम शेर्पा ओडा अध्यक्ष एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर 7 ओडा पालिका परिवार मारबू दोलखा।

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिका वासी दोलखा जिला वासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेजकिरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोला

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला भी जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: विजय दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में कालिंचो गांवपालिका वडा नंबर 7 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कालिंचो गांवपालिकासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरुन्।
1: राम बहादुर पाण्डे ओडा अध्यक्ष, वन्दना मल्ल ओडा सचिव एवं कालिंचो गांवपालिका ओडा नम्बर 7 परिवार सुनखानी दोलखा।

हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचोक गांवपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुल बहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिचो गांव पालिका परिवार दो लाखा।

विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोलोखारो रामेछाप जिलावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। खिम्ती जलविद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गांवपालिका

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिक ओडा नंबर एक जुगू निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकवासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भाई समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति को कामना करद
1: प्रकाश खड्का ओडा अध्यक्ष तेज किरण ओली ओडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: शुभ कामना।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस जिरी नगरपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू समस्त जिरी नगरवासी राजनीति कर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

हार्दिक शुभ कामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांवपालिका निवासी बुबामा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुलबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचो गांवपालिका परिवार दोलाखा।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षित बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिंचो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबरे दोलखा।

0: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारपू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावास एवं देश विदेश में रहन् भाई समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: सोनाम शेर्पा ओडा अध्यक्ष एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर 7 ओडा पालिका परिवार मारबू दोलखा

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दो

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिंचो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा रे दोलखा।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोलोखारो रामेछाप जिल्लावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। खिमपिक जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गाउँपालिका किर्नी तुलोखा
1: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: उद्धव थापा प्रिन्सिपल एवं अल्पाइन पब्लिक स्कूल परिवार सरीकोट दोलखा।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारभू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकासी दोलखा जिलावास एवं देश विदेश में रहन् समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना।